बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत, अभिनंदन। हर सुबह की तरह आज भी 10:02 पर आपके लिए हाजिर हो चुका है आपका अपना कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप, सिर्फ और सिर्फ 107 एफएम रेनबो पर। जुड़ चुके हैं आप दिल से दिल तक। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट पूजा, बना रहेगा हमारा साथ पूरे 11 बजे तक। सिलसिला बातों का, सिलसिला गीत संगीत का, सिलसिला जानकारियों का चलता रहेगा। फिलहाल शुरुआत करते हैं कविता कृष्णमूर्ति, स्वानंद किरकिरे और उदित नारायण की आवाजों के साथ। सुनते हैं फिल्म पुकार का ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में पहले जान लेते हैं मौसम का हाल। तो स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और संभावना है कि दोपहर और शाम के समय थोड़ी तेज हवाएं चल सकती हैं, 35 डिग्री से 30 डिग्री तक तापमान रहने की संभावना है। गुजरे कल की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान 35.4 यानी कि सामान्य रहा और न्यूनतम तापमान 30.0 अर्थात सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक रहा। उच्च आर्द्रता 88% और निम्न आर्द्रता 65% रही। ना कोई बारिश हुई, ना ही आज बारिश की संभावना है। ये तो रहा हाल मौसम का, लेकिन कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में मौसम के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो हम करते हैं आपके साथ साझा। जी हाँ, तो बातों के फेरहिस्त की शुरुआत की जाए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 1 जून से सरकारी बसों में महिलाओं के लिए शुरू की जाने वाली मुफ्त यात्रा योजना से। इस योजना को लेकर परिवहन विभाग ने बस चालकों और कंडक्टरों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट कहा है कि सभी सरकारी बसों में महिला यात्रियों को बिना किसी परेशानी के निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करानी होगी। निर्देशिका के अनुसार एसी और नॉन एसी सभी बसों में, सभी सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ बता दूं आपको कि पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड ने दावा किया है कि रविवार को पूरे राज्य में संयुक्त प्रवेश परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हुई। बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, नकल की कहीं कोई रिपोर्ट नहीं मिली। हालांकि ज्यादातर उम्मीदवारों ने गणित के पेपर को लेकर आपत्ति जताई, और आपत्ति क्या, उन्होंने आरोप लगाया कि गणित के प्रश्न अनावश्यक रूप से कठिन और लंबे थे। कई उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर प्रश्न हल नहीं कर पाए और कई परीक्षार्थियों ने बताया कि गणित के सवालों को हल करने में इतना ज्यादा समय लगा कि 2 घंटे की अवधि व्यवहारिक रूप से अपर्याप्त साबित हुई। और ठीक इसके विपरीत उम्मीदवारों ने अपनी ही बात को काटते हुए कहा कि भौतिकी और रसायन विज्ञान के पेपर बिल्कुल मॉडरेट थे, यानी कि उचित स्तर के थे। साथ ही साथ जब बात चली है परीक्षाओं की, बात चली है विद्यार्थियों की, तो एक सूचना और आप तक पहुंचनी चाहिए।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रविवार को कहा कि कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम के बाद पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से जिन छात्रों से अधिक शुल्क वसूला गया उन्हें धनराशि वापस की जाएगी। सीबीएसई ने कहा कि जिन मामलों में अधिक भुगतान लिया गया है उनमें अतिरिक्त राशि उसी भुगतान माध्यम में वापस की जाएगी जिससे शुल्क जमा किया गया था, और जिन मामलों में कम शुल्क लिया गया है उनसे जरूरत पड़ने पर छात्रों को शेष राशि जमा करने के बारे में भी अलग से सूचित किया जाएगा। कार्यक्रम में और भी कई सारे सेगमेंट्स हैं जो कर रहे हैं आपका इंतजार, लेकिन उससे पहले एक बार फिर धीमी धीमी सी आवाज कविता कृष्णमूर्ति।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो।

जब बात हो नुस्खों की तो चुटकी में कहां समा पाते हैं ये नुस्खे। लेकिन लेकिन लेकिन हमारी जो परंपरा है वो बेहद समृद्ध है और प्रकृति ने हम भारतवासियों को कुछ अलग तरीके से बनाया है। जिस वक्त हमें जिस चीज की जरूरत होती है प्रकृति वो चीजें हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द उपलब्ध कराए रहती है। जैसे कि चल रही है अभी बेहद भीषण भयंकर गर्मियों का मौसम, तेज हवाएं जिन्हें हम लू नाम से जानते हैं। तो लू से बचने के लिए कच्चे आम के कुछ नुस्खों का आप इस्तेमाल कर

0: सकते हैं और खुद को लू से बचा सकते हैं पारंपरिक और लोकप्रिय पेय आम पन्ना। आम को उबाल कर या भून कर उसके गूदों को अच्छे से मसल लीजिए। उसमें काला नमक, सिंधा नमक, जीरे का पाउडर मिलाकर एक पतला शरबत बनाइए और उसे पी लीजिए। आपको खुद को लू से बचाने में सहायता मिलेगी। साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि धूप में निकलने से पहले अगर कच्चे आम का लेप अपनी हथेलियों में और पैर के तलवों में लगा लें तो ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है और लू का खतरा कम करता है। भोजन के साथ सलाद के रूप में कच्चे आम और प्याज का सेवन करें। आयुर्वेद के अनुसार कच्चा प्याज और आम दोनों ही लू के प्रभाव को कम करने में कारगर हैं। कच्ची कैरी का शरबत, कच्चे आम के छोटे छोटे टुकड़े काट ले, उन्हें पानी में उबाल ले, मिश्री या चीनी, चुटकी भर इलायची पाउडर मिलाकर पीने से भी लू से बचाव होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये घरेलू नुस्खे हैं, इलाज नहीं, और सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। आजमाए नुस्खे हैं, आप भी आजमाएं, लेकिन सावधानी के साथ।
1: एक चुटकी नुस्खे,

आपने किसी को कॉल किया, उसने आपकी कॉल कट कर दी। आपने फिर कॉल किया, फिर कॉल किया, फिर कॉल किया, लगातार उसे फोन आप करते ही रहे। और जब उसने कई बार आपके फोन कॉल आने के बाद आपकी कॉल को पिक किया और पूछा, क्या हुआ, क्यों कर रहे हो इतनी कॉल, तो कैसे हो तुम, बस लगा तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। क्या ये हरकत आप भी करते हैं, या आपका कोई अपना है जो आपके साथ करता है ये हरकत, तो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल फोन एटिकेट्स के अंडर में नहीं आता है। बार बार, एक बार अगर किसी ने आपकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, इसका मतलब है कि वो कहीं व्यस्त है और फुर्सत मिलते ही आपसे कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपने एक से अधिक बार कॉल की है, इसका मतलब कोई इमरजेंसी है। और अगर आप अपने इस इमरजेंसी पावर को बार बार यूज करेंगे, तो इमरजेंसी के दौरान में भी आपकी कॉल नहीं उठाई जाएगी। ऐसी घटनाएं अगर आपके साथ भी होती हैं, तो हमारा फोन नंबर है आपके लिए 2243-7912। जुड़ जाएं हमसे और बता दें ऐसी ही घटनाओं को, क्या आप करते हैं ऐसी हरकतें, या कि आपका कोई अपना है जो इस तरह की हरकतें करता है और हो चुका है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में बैन। जुड़ जाएं दिल से दिल तक, साथ बना हुआ है हमारा पूरे 11 बजे तक। फिलहाल 10:44 और 30 सेकंड।

जी हाँ दोस्तों, कहने अपने मन की बात, हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौन है हमारे साथ? स्वागत है आपका दिल से दिल तक। लगता है इनसे हमारा कनेक्शन टूट चुका है, लेकिन ये जो दिल का रिश्ता है ये कभी नहीं टूटता। रोहतक हरियाणा से जुड़े थे सिद्धांत सूरी, और उन्होंने बताया कि इस गर्मी में अभी तक वो अपने 3 दोस्तों को ब्लॉक कर चुके हैं, क्योंकि बार बार

कॉल डिस्कनेक्ट करने के बावजूद उनके वे दोस्त नहीं मान रहे थे और हर बार सिर्फ और सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए अपने अपने एयर कंडीशन्ड ऑफिस से बैठे कॉल किए जा रहे थे, जबकि उस समय सिद्धांत तेज धूप में पैदल चल रहे थे। तो जब हम किसी को फोन करें तो हमें ये भी ख्याल रखना है कि वो ड्राइव कर रहा है, वो पैदल चल रहा है, कहीं व्यस्त होगा, कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ इतना पूछने के लिए क्या तुम्हें बस मिल गई, तुम स्वस्थ सुरक्षित बस में चढ़ गए, सिर्फ इतना पूछने के लिए हम बार बार फोन करें और अगला परेशान होकर किसी दुर्घटना का शिकार हो। बिल्कुल फिक्र करें, अपने अपनों की फिक्र जरूरी है, लेकिन एक सीमा में रहकर जरूरी है।

जी हाँ दोस्तों, अगर ये दुनिया चाहत पर चलती तो शायद मेरी चाहत यही होती कि ये कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप यूं ही चलता रहे। लेकिन हम बंधे होते हैं समय से और घड़ी की सुइयां कह रही हैं बस पूजा बस, आज के लिए कार्यक्रम यहीं तक। तो दीजिए इजाजत अपनी दोस्त अपनी होस्ट पूजा को। कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप से होगी आपसे मुलाकात फिर किसी सुबह किसी शाम इसी चैनल पर। फिलहाल एक बार फिर आप मुझे सुन सकते हैं 100.1 FM गोल्ड पर, ठीक 11:10 पर। चलते चलते छोड़े चलती हूँ आपको विनोद राठौर और श्रेया घोषाल की आवाजों के साथ। सुनते रहें, साथ बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, जुड़े रहें।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

3:08 है, स्टूडियो की घड़ी के समय 107 एफएम रेनबो पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती है आपकी ये रेडियो दोस्त जिसका नाम है शर्मिष्ठा, और लेकर हाजिर हो चुकी हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसे सुनना आप हर रोज पसंद करते हैं। और ये कार्यक्रम चलता रहता है इसी वक्त, यानी कि पूरा एक घंटा होता है मेरे और आपके पास की, जिसमें बॉलीवुड के अपडेटेड खबरें लेकर हम चर्चा करें, बात करें इसी कार्यक्रम में। वैसे मुझे पता है कि भाई बाहर का जो हाल है वो बिल्कुल ही बेहाल कर देने वाला हाल है, और चाहे जो भी हो, है ना, तो इस परिस्थिति को हराने के लिए, जी हाँ, इस परिस्थिति से अपने आप को जीतने के लिए हम सब मिलकर बेहतर से बेहतर कोशिश कर रहे हैं। और गर्मी से बचने के लिए चाहे जितने भी उपाय किए जाने चाहिए वो सारे तरीके हम अपना रहे हैं, है ना। तो इतना कुछ करने के बाद भला गर्मी हमारा क्या ही बिगाड़ सकती है, है ना, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये जो मनोबल है बिल्कुल हमें बनाए रखना है। और इसी के साथ तो भाई ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल हमारे हाथ में जो है उतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना। इसीलिए तो हम सब मिलकर इस गर्मी को, भयंकर गर्मी को हराने की पूरी कोशिश हमारी जारी है। साथ ही साथ मनोरंजन की अगर बात करें तो मनोरंजन के लिए, है ना, हम बिल्कुल, जी हाँ, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम सब कोशिश करते हैं आप सभी सुनने वालों का मनोरंजन करने की। तो फिलहाल मनोरंजन होगा आप सभी का, लगाएंगे मैं और आप तड़का कुछ गीतों का तो कुछ बातों का। कार्यक्रम है 3 का तड़का, जिसे आप सुनते हैं 3:02 से लेकर पूरे 4 बजे तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की, जिसमें बातें होंगी ताज़ा तरीन अपडेटेड न्यूज़ जो कि बॉलीवुड से जुड़ी होती है। साथ ही साथ बात ये भी होगी कि आज आखिर बॉलीवुड की दुनिया में कौन मना रहे हैं अपना स्पेशल वाला बर्थडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। वैसे तो कार्यक्रम की शुरुआत अगर एक प्यारे से, जी हाँ, प्यारे से तराने से हो तो फिर क्या ही कहना, है ना। इसीलिए चुनकर लाई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि कार्यक्रम का शुरुआती गीत होगा, उसके बाद बातें तो होती ही रहेंगी। तो चलिए कार्यक्रम का सबसे पहला गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

3:14 टेस्ट स्टूडियो घड़ी का समय संघ आप शर्मिष्ठागर सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है नॉन स्टॉप। जी हाँ, और 3 का तड़का लगाते हुए हमने शुरुआत कर दी है आज के इस कार्यक्रम की, और लगेगा अलग अलग चीज़ों का तड़का इस कार्यक्रम के, क्योंकि भाई नाम ही है 3 का तड़का। तो बॉलीवुड अपडेट्स लेकर हाजिर हो चुकी है आपकी ये रेडी दोस्त, और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की और जानते हैं कि आखिर किन किन चीजों का तड़का लगने वाला है इस कार्यक्रम में। तो चलिए बॉलीवुड अपडेट्स में सबसे पहले क्या है ये बताऊं आपको। तो ताजा बॉलीवुड अपडेट्स के अनुसार अक्षय कुमार ने अपनी नई एक्शन थ्रिलर फिल्म की घोषणा कर दी है, जो एलियन की कहानी पर आधारित पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। इसके अलावा कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन के लुक और रेड कार्पेट अपीयरेंस को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर भी जारी है। तो चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं हम सभी के चहेते एक्शन हीरो अक्षय कुमार की आने वाली नई फिल्म को लेकर। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की नई फिल्म का ऐलान बिल्कुल हो चुका है, और वे 2027 में बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाने की तैयारी कर रहे हैं। भूत बंगला की कामयाबी के बाद अब अक्षय कुमार एक और थ्रिलर फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने की तैयारी में जुट चुके हैं। खिलाड़ी कुमार की नई फिल्म आ रही है जो एलियन एक्शन थ्रिलर समुक के नाम से हम सबके सामने आने वाली है। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म समुक भारत की पहली बड़े स्तर की एलियन थ्रिलर बनाई जा रही है। फिल्म का निर्देशन कनिष्क वर्मा करने वाले हैं, जबकि फिल्म का निर्माण विपुल अमृतलाल शाह द्वारा किया जाएगा। तो ये तो थी हम सब के चहेते एक्शन हीरो अक्षय कुमार की आने वाली नई फिल्म के बारे में एक चटपटी खबर जो कि पहुंचाई मैंने आप सभी श्रोताओं तक। बात होगी और भी, जी हाँ, और बातें होंगी स्पेशल वाले बर्थडे को लेकर भी, लेकिन फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

तीन का तड़का कार्यक्रम में अब तड़का लगाने वाले हैं हम अगली फिल्म के बारे में। और अगली फिल्म कौन सी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, और फिल्म का नाम है राजा शिवाजी। जी हाँ, आखिर इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या है जिसके बारे में मैं बात करूंगी। तो चलिए सुनते रहिए इस कार्यक्रम को, जुड़े रहिए हमारे साथ। पूरे 4 बजे तक का है ये कार्यक्रम और आप सभी का साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से बातें होंगी अलग अलग बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फिल्म राजा शिवाजी में। 10 साल छोटे रितेश की मां बनने पर भाग्यश्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इस फिल्म को लेकर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात हम सब के साथ साझा की है। और वो बात, जी हाँ, वो मजेदार बात क्या है यही बताने वाली हूँ मैं आप सभी श्रोताओं को। तो भाई, भाग्यश्री ने ये बताया है कि आखिर राजा शिवाजी ये जो फिल्म है, आखिर इस फिल्म में रितेश देशमुख, जो कि उनसे 10 साल छोटे हैं लेकिन अभिनय किया है इस फिल्म में उनकी माँ का, और आखिर इस फिल्म में उन्होंने इसी रोल को करने के बारे में क्यों चुना, इस इंटरेस्टिंग बात को लेकर वे बताती हैं। खैर, क्या बताती हैं इसके बारे में तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन भाग्यश्री का जब भी नाम आता है तो उनके नाम के साथ मैंने प्यार किया एक्ट्रेस। जी हाँ, ये भाग्यश्री के साथ यही वाला जो फिल्म का टाइटल है, मैंने प्यार किया, ये टाइटल अपने आप ही जुड़ जाता है ना। और जैसे ही इस अभिनेत्री का नाम हम लेते हैं, साथ ही साथ नाम लेने के साथ ही इस फिल्म की कहानी, फिल्म के गाने, सब कुछ हमारे नज़रों के सामने घूमने लगते हैं। तो आखिर हो क्यों ना भाई, जितनी हिट फिल्म उस समय थी उतना ही क्रेज इस फिल्म के लिए आज भी लोगों के दिलों में छुपा हुआ है। और कभी ना कभी अगर मौका मिलता है तो आज भी लोग उसी पुराने फिल्म को देखना आज भी पसंद करते हैं। तो चलिए, बात जब हो रही है मैंने प्यार किया एक्ट्रेस भाग्यश्री को लेकर, तो क्यों ना सुने उस फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, और उसके बाद तो बातें होती रहेंगी। बात कर रही थी फिल्म राजा शिवाजी के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर। तो चलिए फिलहाल सुनाऊँ आपको एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में वही पुराना सदाबहार गीत। कार्यक्रम चल रहा है

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर।

0: ആകാശവാണി അറ്റ് 90.
1: तीन बजकर 33 मिनट है, स्टूडियो की घड़ी का समय है। संघ है आप पर शर्मिशा के और सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है तीन का तड़का। और चलिए इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो पर, इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर जो कि हमारा ऑफिशियल ऐप है उस पर भी हमारा ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैं बात कर रही थी अभिनेत्री भाग्यश्री के एक खास रोल के बारे में, जी हाँ, फिल्म राजा शिवाजी की हो रही थी बात, जिसमें अपने से 10 साल छोटे अभिनेता रितेश देशमुख की माँ का रोल निभाया था उन्होंने इस फिल्म में, जिसका नाम है राजा शिवाजी। राजा शिवाजी रितेश देशमुख द्वारा निर्देशित एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और हिंदी स्वराज के उनके दृष्टिकोण पर आधारित है। हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बनी यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

मैंने भी एयर किया। एक्ट्रेस भाग्यश्री ने ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा शिवाजी में रितेश देशमुख की माँ की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में भाग्यश्री ऐतिहासिक फिल्म में राजमाता जीजाबाई बनी थी। अपने से 10 साल छोटे एक्टर की माँ की भूमिका निभाने को लेकर एक्ट्रेस ने रिएक्शन दिया है और इस रोल को लेकर उन्होंने कहा है कि एक्ट्रेस ने बताया कि आखिर उन्होंने इस रोल को करने के लिए हामी क्यों भरी थी। भाग्यश्री ने बताया कि उन्हें राजा शिवाजी में ज़्यादा उम्र का दिखाना पड़ा था और उन्हें 10 साल छोटे रितेश की माँ की भूमिका निभाने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। और ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि अभिनेत्री आगे कहती हैं कि उनका कहना था कि जब आपको कोई ऐसा रोल निभाने का मौका मिलता है जिसके बारे में अपना आपने बचपन से कहानियाँ सुनी हो, तो उसे मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी कि डेडिकेशन था पूरे तरीके से इस रोल के लिए अभिनेत्री भाग्यश्री का, और इसीलिए उन्हें अपने से 10 साल छोटे अभिनेता की माँ का रोल निभाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई फिल्म राजा शिवाजी में। तो ये तो थी खूबसूरत कहानी, अपने रोल के बारे में बता रही थी भाग्यश्री। और चलिए, बातें हो रही हैं, बहुत सी कार्यक्रम चल रहा है 3 का तड़का, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं स्पेशल वाले बर्थडे को लेकर। और बताऊं आपको कि बॉलीवुड की दुनिया में आखिर कौन कौन मना रहे हैं अपना हैप्पी वाला बर्थडे। तो सबसे पहले बात करूंगी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका नाम शायद ही किसी के पास अनसुना हो। जी हाँ, फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं। सिर्फ फिल्मी दुनिया अगर कहूँ तो काफ़ी कम होगा, बल्कि मैं ये बताऊँ कि अभिनेता है, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और इसी के साथ साथ छोटे वाले पर्दे में भी कई बार दिखाई दिए हैं ये शख्स। तो चलिए, अब इतनी सारी बातें जब कर ही रही हूँ तो नाम आखिर बता दूँ, करण जौहर। जी हाँ, जिनका बर्थडे मनाया जा रहा है आज के दिन। तो करण जौहर भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर और प्रभावशाली फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और टीवी होस्ट में से एक हैं, और साल 1972 में आज ही के दिन यानी कि 25 मई को मुंबई में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं और धर्मा प्रोडक्शंस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। करियर की बात आखिर मैं कैसे ना करूं, तो करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत 1995 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से सहायक निर्देशक के रूप में की थी। जी हाँ, और अगर उनकी प्रमुख निर्देशित फिल्मों के बारे में बात करूं तो लिस्ट जो है वो थोड़ी सी लंबी है। तो शुरुआत होती है कुछ कुछ होता है से, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, वगैरह वगैरह बहुत सी फिल्में हैं इनका निर्देशन उन्होंने किया था। बात हो रही है करण जौहर की, तो बातें होंगी और भी बहुत सी, लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा गीत क्यों ना हम सुन ले, है ना।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

3:46 है स्टूडियो घड़िया समय संग है आप शर्मिशा के और सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है तीन का तड़का। तो बात हो रही थी करण जौहर को लेकर। जी हाँ, जिन्होंने अनगिनत फिल्मों को तोहफे के तौर पर हम सभी दर्शकों के पास पहुँचाया। फिल्म निर्देशन के अलावा वे एक सफल निर्माता भी रहे हैं, जिन्होंने कल हो ना हो, ये जवानी है दीवानी, राजी और ब्रह्मास्त्र जैसी कई सफल फिल्मों का निर्माण किया। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं करण जौहर से जुड़ी हैं, और ये सारी बातें जानने के लिए आपको ट्यून करना है फिर एक बार यही चैनल। समय रहेगा 7:02 लेकर आऊँगी कार्यक्रम छायालोक, और आज है सोमवार की शाम, तो सोमवार की शाम के छायालोक के अंतर्गत रहता है आपके लिए सुरों की महफिल, और बातें होंगी इसी सेगमेंट में, इसी कार्यक्रम में करण जौहर को लेकर। तो चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं एक और शख्स के बारे में जिनका भी जन्मदिन मनाया जाता है आज ही के दिन, और जिन्होंने भी अपना नाम कमाया, जी हाँ, अपनी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन आखिर किस फिल्म में। जी हाँ, फिर एक बार बॉलीवुड की दुनिया से ही जुड़े हुए हैं और अभिनेता के तौर पर इन्होंने भी अपना नाम काफ़ी रोशन किया है। तो अभिनेता कुणाल खेमू है अगले शख्स का नाम जिन्होंने भी आज के दिन अपना हैप्पी वाला बर्थडे मनाया। तो चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में। कुणाल खेमू एक जाने माने अभिनेता, लेखक और निर्देशक हैं। साल 1983 में आज ही के दिन हुआ था उनका जन्म, और शुरुआत एक लोकप्रिय बाल कलाकार के रूप में उन्होंने की थी बॉलीवुड की दुनिया में। एक्टिंग करियर की अगर बात करूं तो बाल कलाकार के तौर पर उन्होंने 90 के दशक में गुल गुलशन गुल फार्म, जो कि दूरदर्शन में एक टीवी सीरियल आया करती थी, उसमें उन्हें देखा गया था। इसके अलावा 1993 में फिल्म आई थी सर हम हैं राही प्यार के, और इस फिल्म के अलावा राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों में शानदार काम उन्होंने किया था। मुख्य अभिनेता के तौर पर 2005 में फिल्म कलयुग से बतौर लीड एक्टर उन्होंने शुरुआत की थी। उनकी प्रमुख फिल्मों में ट्रैफिक सिग्नल, जो कि साल 2007 में आई थी, गोलमाल अगेन 2017 में आई थी, मंगल 2020 और लूटकेस, जी हाँ, लूटकेस साल 2020 में आई थी, और ये सारी फिल्में लीड एक्टर के तौर पर हमने देखा था। और अगर निर्देशन की बात करें तो 2024 में उन्होंने फिल्म मडगांव एक्सप्रेस से अपने निर्देशन करियर की शानदार शुरुआत की थी। बात हो रही थी अभिनेता कुणाल खेमू के बारे में, और अभिनेता कुणाल खेमू के अलावा करण जौहर मना रहे हैं आज के दिन अपना हैप्पी वाला बर्थडे। तो चलिए आकाशवाणी की ओर से और सभी श्रोताओं की ओर से जो कि है फैन इन दोनों कलाकारों के, उन सभी की ओर से हैप्पी वाला बर्थडे। अगले और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक प्यारा सा गीत हो जाए, है ना। तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत, आवाज़ है अदनान सामी की आप सभी सुनने वालों के लिए।

अदन सनम की आवाज़ में सुनते रहा सुनते सुनते चलिए कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक और फिल्म के ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म का नाम है जवानी तो इश्क होना है। इस फिल्म का ट्रेलर जो है वो रिलीज हो चुका है और रिलीज होने के बाद आखिर रिएक्शन क्या रहा है दर्शकों का, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ट्रेलर बिल्कुल रिलीज हो चुका है और छा भी चुका है। फैंस इसे ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म बता रहे हैं, पर साथ ही सलमान खान की कैमियो की डिमांड भी कर रहे हैं। फिल्म में जिमी शेरगिल और राकेश बेदी भी नजर आ रहे हैं। वरुण धवन की मच अवेटेड फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और काफी मजेदार भी लग रहा है। फिल्म में वरुण के साथ पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर भी नजर आ रहे हैं, जिनके साथ वे रोमांस करते नजर आ रहे हैं। मृणाल ठाकुर फिल्म में वरुण धवन की पत्नी बनी है और दोनों के बीच बेशुमार प्यार भी नजर आ रहा है, पर ये प्यार और शादी ऐसी है जो आज तक किसी ने देखी या सुनी नहीं होगी। भाई आखिर ऐसा क्या है, इसमें देखना पड़ेगा, है ना। फिल्म में प्यार के साथ खूब सारी कॉमेडी ट्विस्ट और कंफ्यूजन भी होने वाला है, जिसकी झलक ट्रेलर में दिखाई दे रही है। जवानी तो इश्क होना है, जी हाँ है जवानी तो इश्क होना है का मज़ेदार ट्रेलर सलमान का चुनरी चुनरी

गाना है और ये है जवानी तो इश्क होना है का ट्रेलर देख कर कुछ कुछ अक्षय कुमार की फिल्म गरम मसाला का फील भी महसूस किया जा रहा है, पर फैंस को ये धमाकेदार लगा, लेकिन ये तो फैंस को लगा, लेकिन आपको आखिर क्या लगा, कितना लगा इसके बारे में? तो खैर फिल्म रिलीज़ होने के बारे में ही रिलीज़ होगी उसके बाद ही असली रिएक्शन पता चलेगा, है ना? तो उनका कहना है कि डेविड धवन एक बार फिर ब्लॉकबस्टर लेकर आए हैं, वहीं फैंस ट्रेलर में धुरंधर के जमील जमाली यानी कि राकेश बेदी को देखकर भी क्रेजी हो रहे हैं और सलमान खान का चुनरी गाना भी है, है जवानी तो इश्क होना है कि ट्रेलर में चार चांद लग रहे हैं। और आखिर असली रिएक्शन अगर हमने देखना है, सुनना है, जानना है, तो बस इंतज़ार करना है आखिर पूरी कहानी को देखने के बाद क्या रिएक्शन होने वाला है, है ना? तो चलिए फिलहाल इंतज़ार करने के अलावा एक और हम काम कर सकते हैं, सुन सकते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत होने वाला है। और इसी के साथ शर्मिशा लेके जल्द आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की मिल रही हूँ। बहुत जल्द समय रहेगा 5:20, और दोबारा मुझे सुनने के लिए आपने ट्यून करना है 100.1 FM गोल्ड लेकर आऊँगी कार्यक्रम चैन क्लासिक्स आप सभी सुनने वालों के लिए। इसके अलावा इसी चैनल पर दोबारा आप सभी से बात होगी, समय रहेगा 7:02 लेकर आऊंगी कार्यक्रम छलक। तब तक के लिए क्यों रहेगा, जी हाँ, चैनल है 107 FM रेनबो और सुनते रहिए कार्यक्रम के अगले और आखिरी गीत को।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

हो गया है तुझको तो प्यार सजना। वाकई में आज जिनके बारे में मैं बात करूंगी, उनकी फिल्मों को अगर आप देखते हैं, देखना पसंद करते हैं, और अगर आपने देखी है उनकी फिल्में, तो फिर वाकई में ये कहने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा कि आपको प्यार ज़रूर से हो चुका है, या फिर हो रहा है, या फिर होने वाला है। और अब सवाल ये उठता है कि प्यार आखिर किससे हो रहा है, इन शख्स की फिल्मों से हो रहा है या फिर किसी और से। भाई ये तो आपका निजी मामला है, और ये बात आप भली भांति सिर्फ आप ही बता सकते हैं कि आखिर वो शख्स कौन है जिनसे आपको प्यार हो रहा है, या फिर ये कहें कि आज जिनके बारे में बात कर रही हूं उनकी फिल्मों को लेकर आप बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, या फिर कोई और है जिनके लिए आपके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जिनके बारे में कुछ कुछ आपको होता है। तो खैर, 107 एफएम रेनबो पर शर्मिशा चली आई है दोबारा आप सभी श्रोताओं का मनोरंजन करने के लिए, और इस बार लेकर आई है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है छायालोक। और फिलहाल स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 7:13 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, और इस वक्त शर्मिशा है बिल्कुल तैयार और हाजिर हो चुकी है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है छायालोक। और सोमवार की शाम है, तो सोमवार की शाम छायालोक के अंतर्गत हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत खास, बिल्कुल अलग, कुछ हटके होता है आज की शाम, यानी कि सोमवार की शाम छायालोक के अंतर्गत होता है आप सभी के लिए सुरों की महफिल। और क्या मुझे ये कहना बाकी है, जी हाँ, या फिर मैं ये सोचूं कि आप अभी भी सोच रहे होंगे कि आज की शाम आखिर किन के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। वैसे तो कुछ देर पहले, यानी कि कुछ घंटों पहले, जब 3 का तड़का कार्यक्रम में बात हो रही थी आपसे, तभी मैंने बता दिया था कि भाई आज की शाम छायालोक के अंतर्गत सुरों की महफिल में आखिर किन को लेकर मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए, जिन श्रोताओं ने नहीं सुना था उस कार्यक्रम को, और अभी अभी जो श्रोता जुड़ रहे हैं हमारे साथ छायालोक के अंतर्गत सुरों की महफिल को, जिन श्रोताओं ने अभी अभी सुनना शुरू किया है, तो चलिए उन्हें बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बर्थडे बॉय करण जौहर को लेकर। आज है उनका जन्मदिन, और उनके जन्मदिन के अवसर पर सभी श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी की ओर से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, और उनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम बात करेंगे उनकी प्यारी प्यारी फिल्मों को लेकर, और फिल्मों के गीतों को लेकर भी बातें होंगी इसी कार्यक्रम में। तो चलिए, आज बात हो रही है एक ऐसे शख्स को लेकर जिनमें सिर्फ एक चीज़ नहीं, बल्कि एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और बहुत कुछ है उनके अंदर। बात करूंगी एक एक गुण को लेकर उनके, तो करण जौहर भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर और प्रभावशाली निर्माताओं, निर्देशकों और टीवी होस्ट में से एक रहे हैं। 1972 में आज के दिन यानी कि 25 मई को मुंबई में उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा धर्मा प्रोडक्शंस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि करण जौहर ही रहे हैं। तो चलिए, बातें होंगी बहुत सी, लेकिन फिलहाल अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा नगमा आप सभी सुनने वालों के लिए।

7:20 है स्टूडियो घड़ी का समय और फिलहाल अरिजीत सिंह की आवाज़ में सुन रहे थे ए दिल है मुश्किल फिल्म से इस बहुत ही प्यारे से भावुक कर देने वाले गीत को। जी हाँ, कुछ ऐसे गीत, कुछ ऐसे नगमे और कुछ ऐसी कहानियाँ लेकर आई हूँ आप सभी के साथ साझा करूँगी आज के इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है छायालोक। और सोमवार की शाम छायालोक के अंतर्गत आप सभी के लिए होता है सुरों की महफिल। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अभिनेता, जी हाँ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर को लेकर। आज है उनका जन्मदिन और उनके जन्मदिन के अवसर पर उनसे जुड़ी बहुत सी बातें, खासकर उनकी फिल्मों से जुड़ी, उनकी फिल्मों के गीतों से जुड़ी बहुत सी बातें साझा करूंगी आज के इसी कार्यक्रम में। तो चलिए जुड़े रहिएगा इस कार्यक्रम के साथ, कार्यक्रम चलता रहेगा पूरे 9 बजे तक। और एक और प्यारा सा नगमा अलका याग्निक और शान की आवाज़ में आप सभी सुनने वालों के लिए।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: पुराने

0: सपनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: सात बजकर 32 मिनट है, छुट्टी की घड़ी का समय। और बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आपकी रेडियो दोस्त शर्मेशा के साथ। और जो श्रोता अभी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम में यानी कि छायालोक के अंतर्गत सुरों की महफिल में आज बात हो रही है बर्थडे बॉय करण जौहर को लेकर। आज है उनका जन्मदिन और उनके जन्मदिन के अवसर पर उनकी फिल्मों को लेकर ढेर सारी गपशप की जा रही है आज के इसी कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बताऊं आपको कि करण जौहर की फिल्मों से जुड़ी आखिर क्या क्या बातें हैं, जी हाँ, जो कि हो सकती है सुनी हो या फिर अनसुनी हो। करण जौहर 28 सालों से इंडस्ट्री में एक्टिव रहे हैं। उन्होंने डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन में किस्मत आजमाई और सक्सेसफुल भी रहे। फिल्म मेकर करण जौहर ग्लैमर वर्ल्ड के सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज़ में से एक रहे हैं। उन्होंने एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन सब कुछ कर लिया है। हालांकि एक्टिंग में करण जौहर जो है खास कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन डायरेक्शन और प्रोडक्शन में वे बिल्कुल सफल रहे। और सफल इतने रहे कि ये बताना तो खैर इतिहास है। हम सब जानते हैं कि जिन फिल्मों के साथ करण जौहर का नाम जुड़ा रहा, चाहे वो डायरेक्शन की दुनिया में हो चाहे वो प्रोडक्शन की दुनिया में हो, उन फिल्मों ने सफलता का रुख देखा ही देखा। और बहुत सी बातें हैं जो कि साझा करूंगी इस कार्यक्रम में। और आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर इस फिल्म के बारे में तो ज़रूर याद होगा। तो चलिए उस फिल्म के आर्टिस्ट के बारे में कुछ बताऊं आपको। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को 3 बेहतरीन कलाकार दिए थे, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट। आज बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में शामिल है ये तीनों स्टार्स। इस फिल्म के बाद वरुण धवन और आलिया की जोड़ी ने कई हिट फिल्म दिए हैं। तो चलिए रुख करते हैं एक फिल्मी गीत की ओर। और बात हो रही थी जिस फिल्म को लेकर, यानी कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर इस फिल्म को लेकर मैं बात कर रही थी, तो उसे फिल्म का एक गीत आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो चलिए सुनिए ये गीत, सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक के अंतर्गत सुरों की महफिल।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: सात बजकर 45 मिनट है। स्टूडियो की घड़ी का समय, संघ्या और शर्मिष्ठा के और सुन रहे हैं छायालोक के अंतर्गत सुरों की महफिल। और आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता, निर्माता, निर्देशक करण जौहर को लेकर। आज है उनका जन्मदिन और चलिए इस वक्त बात कर लेते हैं उनके शुरुआती करियर को लेकर। करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत 1995 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से सहायक निर्देशक के रूप में की थी। एक निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म जो है कुछ कुछ होता है थी, जो कि बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। उनकी प्रमुख निर्देशित फिल्मों में कई सारी फिल्में शामिल हैं, जैसे कि कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना के अलावा माय नेम इज़ खान, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ए दिल है मुश्किल और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा फिल्म निर्देशन के अलावा वे एक सफल निर्माता भी रहे हैं। उन्होंने कल हो ना हो, ये जवानी है दीवानी, राजी और ब्रह्मास्त्र जैसी कई सफल फिल्मों का निर्माण भी किया है। बातें और भी, लेकिन फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा नगमा गायक कलाकार उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में।

करण जौहर की फिल्में यानी कि कुछ कुछ होता है जी हाँ, जितनी फिल्में उन्होंने बनाई या फिर प्रोड्यूसर के तौर पर उनका नाम जिन फिल्मों के साथ जुड़ा रहा, जैसे ही हम उन फिल्मों को देखते हैं तो वाकई में उन फिल्मों के साथ कुछ कुछ हो जाता है, यानी कि एक अलग लगाव सा हो जाता है उन फिल्मों के साथ। और अगर हम लव स्टोरी की बात करें तो लव स्टोरी के तौर पर बहुत सी फिल्में करण जौहर ने बनाई या फिर प्रोड्यूसर के तौर पर उनका नाम जुड़ा रहा उन फिल्मों के साथ। लेकिन अगर मैं बताऊं कि देशभक्ति का जज्बे से जुड़ी भी बहुत सी फिल्मों के साथ करण जौहर का नाम जुड़ा है, जी हाँ, फिल्म अगर राजी की बात करूं या फिर केसरी की बात करूं या फिर गुंजन सक्सेना और शेरशाह, इन फिल्मों की अगर बात की जाए तो देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था इन फिल्मों में। और इन सारी फिल्मों में प्रोड्यूसर के तौर पर करण जौहर का नाम जुड़ा रहा, यानी कि सिर्फ कुछ कुछ होता है नहीं बल्कि देश से भरपूर लगाव भी दिखाया गया है करण जौहर की इन फिल्मों में। तो फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा नगमा आप सभी सुनने वालों के लिए।

राजी फिल्म के इस गीत को सुनते सुनते मैं और आप जुड़ेंगे समाचार की दुनिया के साथ, और ठीक 2 मिनट के न्यूज ब्रेक के बाद यानी कि 8:02 पर दोबारा मैं और आप जुड़ेंगे, लेकर आऊंगी कार्यक्रम 6 लोग। तब तक के लिए सुनते रहिए इस प्यारे से गीत को।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छाया लोग, छाया लोग 107 FM।

0: रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया लो, छाया लो।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

8:08 है, स्टूडियो घड़ी का समय 107 FM रेनबो पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप है संग आपकी रेडियो दोस्त शर्मिशा के, और 107 FM रेनबो पर चल रहा है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है छायालोक। और सोमवार की शाम छायालोक के अंतर्गत हम लेकर आते हैं आपके लिए सुरों की महफिल। और आज के इस कार्यक्रम में बात हो रही है एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर को लेकर। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उनकी फिल्मों को लेकर हो रही है गपशप इसी कार्यक्रम में। तो चलिए इस वक्त बात कर लेते हैं करण जौहर के पसंदीदा स्टार्स को लेकर। करण जौहर की सबसे हिट जोड़ी सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ रही है। उनकी जोड़ी ने बॉलीवुड को कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना और माई नेम इज खान जैसी ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। इसके अलावा उन्होंने काजोल, रानी मुखर्जी, करीना कपूर और आलिया भट्ट के साथ भी कई सुपरहिट फिल्में बनाई हैं। बात करें शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान के साथ करण जौहर की जोड़ी को भारतीय सिनेमा की सबसे कामयाब अभिनेता निर्देशक जोड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है से लेकर माई नेम इज खान तक साथ में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। इसके अलावा काजोल की अगर बात करें, तो काजोल करण जौहर की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। करण की बतौर निर्देशक पहले फिल्म कुछ कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम में काजोल की अदाकारी को बहुत पसंद किया गया था। इसके अलावा करीना कपूर की अगर बात करें, तो जी हाँ, जिस गीत को आप सुन रहे थे उस गीत में, उस फिल्म में करीना कपूर के नाम को, जी हाँ, छोटे से स्वीट से नाम को पू के तौर पर पुकारा जाता था। करीना कपूर के साथ करण का पेशेवर और व्यक्तिगत रिश्ता बहुत गहरा रहा है। उन्होंने करीना को कभी खुशी कभी गम में पू जैसा आइकॉनिक किरदार दिया है। बात करूंगी आलिया भट्ट और रानी मुखर्जी को लेकर भी, लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा नगमा सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक के अंतर्गत सुरों की महफिल।

हाँ तो बात हो रही थी करण जौहर के पसंदीदा स्टार्स को लेकर, तो चलिए अब बात कर लेते हैं अभिनेत्री रानी मुखर्जी को लेकर। कुछ कुछ होता है कभी अलविदा ना कहना और राजा की आएगी बारात जैसे फिल्मों के माध्यम से करण और रानी मुखर्जी का तालमेल भी बेहद सफल रहा। इसके अलावा आलिया भट्ट की बात क्या ही करूं। करण ने आलिया भट्ट को फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लॉन्च किया था। इसके बाद उनकी जोड़ी राजी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, डियर जिंदगी और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी फिल्मों में बहुत ज्यादा हिट रही।

कितना भावुक कर देने वाला ये गाना था ना, है ना। नीति मोहन की आवाज़ में मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म से सुन रहे थे आप इस गीत को, और फिर से करण जौहर का नाम जुड़ जाता है इस फिल्म के साथ, इस फिल्म के इस बहुत ही प्यारे से नगमे के साथ। और जैसे ही इस गीत को हम सुनते हैं, वाकई वाकई में प्यार में पड़ जाने वाला ये गीत है। और करण जौहर, जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, मैच मेकर के तौर पर करण जौहर के नाम को लिया जाता है। एक ऐसे शख्स जिनकी हर एक फिल्म की कहानी में अलग अलग प्रेम कहानी छुपी होती है। जी हाँ, हर एक लव स्टोरी जिसे देखते ही आपको प्यार तो हो ही जाता है। और बड़े दुख की बात यही है कि प्यार भरे फिल्मों को बनाने वाले शख्स के जीवन में खुद प्यार नहीं ठहरता। जी हाँ, प्यार से कोसों दूर रहते हैं ये शख्स करण जौहर। इसके अलावा और भी बातें हैं बहुत सी जो कि साझा करूंगी इस कार्यक्रम में। जी हाँ, प्यार भले ही ना हो उनके खुद के जीवन में, लेकिन फिल्मों को भर दिया है प्यार भरी कहानियों के साथ। इसके अलावा टेलीविज़न और फैशन की दुनिया में भी उनका काफ़ी ज़्यादा नाम रहा है। टेलीविज़न के छोटे से पर्दे पर अलग अलग टीवी शोज़ के ज़रिए करण जौहर को हमेशा ही देखा जाता है। इसके अलावा फैशन की दुनिया में भी उन्होंने अपना एक बहुत ही बोल्ड नाम बना लिया है। बात करूंगी उनके फैशन को लेकर भी, लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा गीत लकी अली की आवाज़ में।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

हाँ, तो मैं बात करने वाली थी करण जौहर से जुड़े ड्रेसिंग सेंस को लेकर। फिल्म निर्माता और फैशन आइकॉन करण जौहर अपने अतरंगी और बोल्ड ड्रेसिंग सेंस के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अक्सर बोल्ड प्रिंट्स, ओवरसाइज जैकेट्स, डिजाइनर सनग्लासेस और हाई एंड लग्जरी एक्सेसरीज के साथ एक हटकर और एक्सपेरिमेंटल स्टाइल में देखा गया है। उनसे जुड़े एक और मजेदार वाक्य के बारे में बताऊं क्या आपको? तो चलिए बात करते हैं करण जौहर से जुड़े एक मजेदार किस्से को लेकर। उन्हें ना ऑटोग्राफ देना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। ऑटोग्राफ देना उनके शौक में शामिल था और ये जो वाक्य है ये इसी ऑटोग्राफ से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक बार उनके एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि एक बार प्रोडक्शन ऑफिस से बाहर निकलते वक्त उनके पिता ने कुछ चेक्स पर साइन करने के लिए उन्हें कहा था, जिसके बाद करण ने साइन तो किया, जी हाँ, लेकिन क्या लिखा पता है? सभी पर लॉट्स ऑफ लव लिखकर उन्होंने साइन किया था। उसके बाद आखिर होना क्या था? उनके पिता ने उन्हें वहीं पर पकड़ लिया और कहा कि पिता यश जौहर ने उन्हें कहा कि वो तुम्हारा प्यार नहीं चाहते बल्कि वो तुम्हारा पैसा चाहते हैं। तो ये तो था कुछ अजीबोगरीब लेकिन मज़ेदार किस्सा करण जौहर के ऑटोग्राफ से जुड़ा हुआ था। बात करूँगी और भी, लेकिन फ़िलहाल एक प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

8:40 है, स्टूडियो की घड़ी का समय। संगे आप शर्मिष्ठा के और सुन रहे हैं छायलो के अंतर्गत सुरों की महफिल। और आज के इस कार्यक्रम में बर्थडे बॉय करण जौहर को लेकर हो रही है बहुत सी बातें। जी हाँ, उनकी फिल्मों को लेकर, उनकी फिल्मों के गीतों को लेकर। तो चलिए अब भी, जी हाँ, इस वक्त फिर एक बार एक सुना अनसुना किस्सा आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। फिर एक बार अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर करण जौहर से जुड़ा हुआ है ये किस्सा। तो साल 1998 में 16 अक्टूबर को आई फिल्म कुछ कुछ होता है से करण जौहर ने बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया था। करण जौहर ने बताया कि फिल्म, जी हाँ, उन्होंने एक बार अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि फिल्म DDLJ यानी कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के दौरान उनकी शाहरुख खान से दोस्ती हुई, जिन्होंने उनसे एक फिल्म का निर्देशन करने और उसमें शाहरुख को हीरो चुनने के लिए कहा गया था। उनके मुताबिक उस समय करण जौहर का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। एक दिन किंग खान ने यह शौहर को कॉल लगाकर ये कहा कि मैं चाहता हूं आपका बेटा एक फिल्म को डायरेक्ट करे और उस पर काम करना शुरू करे। एक साल बाद करण भी फिल्म के स्क्रीन प्ले के साथ शाहरुख के सामने हाजिर हुए और फिर फिल्म हिट रही। जी हाँ, ये तो थी कहानी करण जौहर और शाहरुख के रिश्ते को लेकर, किस तरीके से उनका जुड़ाव बढ़ता चला गया इन फिल्मों के जरिए। फिलहाल एक और प्यारा सा गीत आप सभी श्रोताओं के लिए।

चलिए अब बात कर लेते हैं करण जौहर की उन फिल्मों को लेकर जिनमें उन्होंने बतौर अभिनेता काम किया, लेकिन लीड रोल में नहीं, ज़्यादातर उन्हें देखा गया साइड रोल में। फिल्में चाहे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो या फिर कल हो ना हो, होम डिलीवरी, कभी अलविदा ना कहना या फिर सलाम इश्क के अलावा ओम शांति ओम या फिर हो हंसी तो फंसी, ये सारी फिल्में ऐसी फिल्में हैं जिनमें करण जौहर ने एक्टिंग तो की लेकिन लीड रोल में नज़र बिल्कुल नहीं आए, बल्कि उन्हें देखा गया साइड रोल के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिसमें लव स्टोरी तो ज़रूर है लेकिन प्लॉट जो है वो बिल्कुल अलग है। बात करूँगी उन फिल्मों के बारे में भी, लेकिन फ़िलहाल अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

हाँ, तो मैं बात कर रही थी करण जौहर की कुछ ऐसे फिल्मों के बारे में जिसमें फिर एक बार लव स्टोरी को तो देखा गया लेकिन भूतिया तौर पर, यानी कि हॉरर फिल्में भी, हॉरर फिल्मों के साथ भी करण जौहर का नाम जुड़ा हुआ है। जी हाँ, अगर फिल्म का नाम बताऊं, घोस्ट स्टोरीज, जो कि बनी थी साल 2020 में, और इस फिल्म का डायरेक्शन किया था खुद करण जौहर ने। इसके अलावा प्रोड्यूसर के तौर पर भी भूतिया फिल्म के साथ उनका नाम जोड़ा गया था। फिल्म थी भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप, दो की रिलीज हुई थी फिर एक बार उसी साल यानी कि साल 2020 में, और इस फिल्म का प्रोडक्शन किया था खुद करण जौहर ने। तो यानी कि लव स्टोरी तो बरकरार रही लेकिन प्लॉट के तौर पर भूतिया फिल्म यानी कि हॉरर फिल्मों के जरिए उन्होंने इश्क को, लव को, प्यार को बतौर, जी हाँ, एक अच्छे अभिनेता, एक अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर लव स्टोरीज को बरकरार रखा। लेकिन प्लॉट चाहे देशभक्ति वाले फिल्में हों, चाहे हॉरर फिल्म हों, या फिर इसके अलावा लव स्टोरी वाली ढेर सारी फिल्में तो हमने देखी ही हैं, जिसके साथ आज के हमारे बर्थडे बॉय करण जौहर का नाम जुड़ता है।

शान की आवाज़ में सुन रहे थे आप इस गीत को, और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को करना होगा समाप्त, क्योंकि इस छोटी घड़ी जो है वो बार बार इशारा करते हुए यही बता रही है कि 8:55 हो चुके हैं, यानी कि आज के इस कार्यक्रम को करना होगा यहीं पर समाप्त। और आज के इस कार्यक्रम में बर्थडे बॉय करण जौहर को लेकर हम कर रहे थे बात, ढेरों फिल्में जी हैं उनकी प्रोडक्शन की हुई फिल्में या फिर डायरेक्शन की हुई फिल्मों के किस्से सुनवा रही थी आप सभी श्रोताओं को। कल फिर से इसी जगह इसी चैनल पर दोबारा बात होगी, लेकर आऊंगी प्यार भरे नगमे और गपशप होंगी ढेर सारी इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए ट्यून रहेगा 107 FM रेनू के साथ, और आज के इस कार्यक्रम के अगले और आखिरी पेशकश शंकर महादेवन की आवाज़ में इस गीत को सुनते सुनते शर्मिष्ठा को दीजिए इजाज़त आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। नमस्कार, शबा खैर, गुड नाइट।